0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।
1: भाई नारियल में बहुत गुण होते हैं, आप कुछ कह रही थी।
0: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो इंतज़ार है, शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें
0: जी। और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं और हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिखकर हमें भेजे।
1: हाँ, वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई देखो, त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक त्योहार लगातार है, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी हैं हमारी सखियाँ, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको आके जो ग्रेस आती है पहनने पर, वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, कैसी बनती है और
0: किस राज्य की है,
1: किस राज्य की है
0: जी। बिल्कुल। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने चुना है प्रसन्नता, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, पर अगर हम प्रसन्नता को अपनाते हैं तो दुख के दिन भी बड़े आराम से निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये असली जीवन का आधार है प्रसन्नता। और हम श्रोताओं से चाहते हैं कि आप और संदेश हमें लिख के भेजिए, कुछ ऐसी बात भी लिख के भेजिए, क्योंकि आया तो है, कुछ कमेंट्स आए तो हैं, पर इंतजार है कुछ और उनके संदेशों का। और साथ में जानकारियां भी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो फूड पैकेट्स पर जो जानकारी लिखी होती है वो पढ़ना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार को, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या चीज हम तैयार बाजार का अगर उन्हें खिला रहे हैं तो उसमें क्या उनके खान पान में जा रहा है, ये चीज के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है।
0: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है।
1: बिल्कुल,
0: उसके हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है वो सारे पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और अभी क्या जरूरी है,
1: गीत बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: सुनते हैं गीत।

0: आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य हैं, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपना जो जीवन चलाते हैं।
0: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
1: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है, यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं। इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती है और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
0: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, और
0: ये दिवस जो है ना, हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल, और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजने का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, एक रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयाँ भी बनती हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है, तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता है।
0: हम कितने समृद्ध है ना इस प्रकृति के साथ। एक साथी लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से श्री फल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहाँ तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी, उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
0: और आप गाना सुन ले।

0: अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं।
1: शायद फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं। और साड़ी की गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना? और आप भी बताइएगा चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है। या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा, जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतने भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको?
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: तो चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना, उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियाँ बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं लगती है बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है। तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती है। और

0: अरे बहुत आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम, जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिज़ाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
1: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं, और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
0: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है, और इसीलिए ये साड़ी आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई खास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्यौहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कंफर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो एक मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी, क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है, अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर होता है ना वो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत ये है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ये साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे सोनाली
1: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं, और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
0: बिल्कुल। अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियाँ पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकर की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
1: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है, और एक बार पहन के जरूर देखिए।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, मुझको हुई ना खबर, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सोनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मज़े में हमारे घर में खाते हैं। इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए, ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहते हैं कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज़ उठता हूँ।
5: अब हम वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक।
4: चलिए

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए हैं, वो चुन रही थी। तो चलिए, आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना अक्सर होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है, इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है या कब बनाया या कब पैक किया गया है, इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है, दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय MRP हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उस पे दो चिन्ह होते हैं दीपा। खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है, इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है, ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी। बिल्कुल ताजा किस्सा बताना चाहूंगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ 2 कुकीज के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नजर कुकीज के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज बाय डेट 26 अगस्त 2026, इन एक्सपायर डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाया। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए। इतनी ये जागरूकता हर किसी को जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताज़े पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा, बच्चे मानते नहीं हैं। तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स

0: में है और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
1: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसैचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
0: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर, सोच समझकर उस चीज़ को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना। सक्यों याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं गीत सुन करके हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं। और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सोनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी है ना। भाई साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल। और अपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है। और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए।
0: मेरे लिए तो नहीं कह रही आप।
1: शायद हो भी सकता है।
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं
0: और इनसे दूर ही भागते लोग।
1: हाँ ऐसा भी होता है। और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है। भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है दो तीन बार पढ़ लेना चाहिए है ना,
0: या फिर अपने पास रख लेना चाहिए।
1: हाँ इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल।
0: एक साथी कहते हैं प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है।
1: बहुत सुंदर
0: जी।
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है, ये तो हमारे मन के भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते रहे।

0: तो दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ
0: जी। हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफ़ेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे। घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो इसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आँच पर चीनी घुलने तक पकाएं। और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद। और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पर बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खूब खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छोंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डाल के भून लीजिए। जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।